0: on board, take this boat. Lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom.
1: Hello, you beautiful people. My name's Sunny. I host The Devil Rises Show every Saturday from 2 to 4, only on the WAZ FM 99.8. Remember to tune in. Don't miss it.
2: एक पल की लापरवाही.
3: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: ये जुल्फें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, ये जुल्फें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, किसी की धड़कने यूं ही बढ़ा रखी हैं। सुर्ख रुखसार पे वो तिल तौबा, कितनों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मैकदों में वीरानी सी छा गई है, मैकदों में वीरानी सी छा गई है, यो आपने महफिल की रौनक सजा रखी है। नजरों के प्यालों से छलकते जाम ये, नजरों के प्यालों से छलकते जाम ये, हर सू में कशों की बाढ़ लगा रखी है। हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, मुसव्वरी की आपने हर हद ढा रखी है। सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, क्या मुझे मदहोश रखने की कसम खा रखी है।
1: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
4: एक पल की लापरवाही।
5: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Hours FM 99.8. Hours FM.

0: directly now on 0776 514 5046, or you can email info@hoursfm.co.uk.
1: मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: Yang Yingwu of China.
3: Friend of the show.
2: She's one of the 900 that listens. She's big shout out to Yang.

किस्मत में लिखा होता तो क्या होता किसी का साथ, किस्मत में लिखा होता तो क्या होता गवारों का भी दुनिया में, खुदा होता तो क्या होता गवारों का भी दुनिया।

0: This is your host from Norfolk, Alex Aller, on a Waz Drive Time. Listen to me at 4 to 6 on Fridays, 99.8 FM. Turn it up and lock it in. Happy Friday on a Waz, 99.8 FM. Call me on our landline, 02381 9800 72. Finish your Friday with me, Alex.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.

0: to
1: the Behind the Mic Show.
2: Tune in every Monday
1: from 1 till 3.
3: Sporting waffle and absolute nonsense.
1: Talking about sport, sport, sport.
2: On Awaaz 99.8 FM.
4: एक पल की लापरवाही।
5: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: Details, search South Hampshire College Group.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Gaana mari pasand nahi hum bane tum bane ek dusre ke liye India ka gaana purana ye bulaya

0: तुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Ours FM.

0: Southampton's Community Radio, Hours FM.
1: How do you say it? A was? Or a was?
2: Say again, say again.
3: Yeah, I'm listening to Awaz all the time when I'm driving because I'm delivering, and I'm delivering your own food today. That was nice.
0: 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
4: Uncle, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं हुणी ग्राउ आया सा घर, प्रोग्राम तोड़ा लाया, डाउनलोड कीता। तू बोल से तो वेरे सा कोई फरमाइश कर सा ना, कोई केड़ा गाना सुनना चाहे अपने वेले आला या दोया आला, जेड़ा गाना सा आक्सा लासे ना ते माड़े मैसेज ले पहुंचनी फिर मैं सुना।
3: हेलो, आई एम सापिया कॉल, यू आर लिसनिंग टू आवाज एफएम।
4: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
5: जस्ट बिकॉज़ आई एम अ ड्राइवर doesn't mean I can see you.
6: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
7: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
8: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
9: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
10: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
11: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
12: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
13: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
14: Oh my Lord, take this home. Lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom of the river.
15: Hello, you beautiful people. My name's Sunny. I host The Devil Rises Show every Saturday from 2 to 4, only on the Waz FM 99.8. Remember to tune in. Don't miss it.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.

0: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: लाइफ को अटकना नहीं आता तो फिर हम और आप क्यों रुके इस तेजी से दौड़ती जिंदगी का साथ दो जिंदगी चले बिना रुके

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
4: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
5: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
6: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
7: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
8: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
9: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
10: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.

0: मैडम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव responsibly. फोकस ऑन द रोड।
2: Yang Yingwu of China.
3: Friend of the show.
2: She's one of the 900 that listens. She's big shout out to Yang.

0: Hours FM. 99.8 Hours FM. Don't stop, never give up.
1: Hold your head high and reach the top. अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ
0: You're listening to Awaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
2: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
3: So we need a new jingle, Ellie. We've got to get in that studio and produce a new jingle.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हुई हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं औस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में, औस कतरों में, खुशबुओं में ना पाओ मुझे, अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफितों में तुम्हें मिलूंगा।

0: 99.8 Hours FM. Check out our community section on our website, hoursfm.co.uk.
1: अंकल, मुझे तो बड़ी ओके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी ओके डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.
1: At Southamptonshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry-expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southamptonshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on
4: from
3: the internet.
4: From Merriers to Mayfield, from Bitton to Bassett, this is Awaz FM.

हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सीमा सरगम। हमारा प्रोग्राम है आवाज़ कैरियोकी क्लब, जो कि आप सुनते हैं हर संडे 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। और ये प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त क्यों है? जी हाँ, तो इसकी एक ही वजह है कि इसमें आपके गाए हुए गीत हम शामिल करते हैं, दुनिया भर तक आपकी आवाज़ पहुंचाते हैं। आवाज़ FM के माध्यम से जो आप सुन रहे हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से। और चलिए आज की शुरुआत हम करते हैं नरा सिंह राव की आवाज़ में एक गीत, ऑल द वे फ्रॉम सिकंदराबाद। तो ये गीत भी बहुत प्यारा है, ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। इंजॉय कीजिएगा ये पहला गाना।

0: the man on the jukebox. Drive time on a WAV with Aaron. Chat, tunes and travel updates that may or may not be accurate. Join me Mondays 4 to 6 only on a WAV FM 99.8 FM.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM. आप हमें सुन रहे हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से. दुनिया भर में आप इंटरनेट पे सुनते हैं, अपने स्मार्टफोन पे सुनते हैं, तो लिसन बैक करते हैं. जी हाँ, ये सहूलतें आपको दी जाती हैं. तो चलिए, जो गीत अभी आपने सुना ये थे नरा सिंह राव ऑल द वे फ्रॉम सिकंदराबाद. तो अब हम इनवाइट करते हैं रविंद्रा याड्रेकर, जो कि टोरंटो के रहने वाले हैं, और बहुत ही प्यारा सा गीत है, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे. इंजॉय कीजिएगा.

दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज खैरियों की क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज FM पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए खैरियों की गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज खैरियों की क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM। बेशक ये है आवाज FM और मैं हूँ सीमा सरगम, और इसमें जितने भी गाए हुए गीत हैं हमारे आवाज खैरियों की क्लब में, जी हाँ, आप ही के गाए हुए गीत हैं। और आप ये प्रोग्राम सुनते हैं हर संडे 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे, और रिपीट होता है वेनसडे मॉर्निंग UK टाइम 8 AM। तो जो गीत अभी आपने सुना रविंद्र यादव की आवाज़ में ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो, तो अब हम दावत देते हैं बीना मुजारिया को, जो कि हैरो लंदन की रहने वाली हैं। बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी उनकी वॉइस है। तो ये गीत है रहे ना रहे हम, इंजॉय कीजिएगा।

0: आवाज करियोके क्लब अब हर बुधवार को सुबह 8 से 10 बजे तक रिपीट किया जाता है। जो इस प्रोग्राम को सुनने वाले साउथ एशिया यानी इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं, वो अब दिन के दौरान आवाज करियोके क्लब सुनकर इसका लुत्फ ले सकते हैं। तो याद रखिए, अब आवाज करियोके क्लब हर बुधवार को सुबह 8 बजे यूके टाइम के मुताबिक रिपीट किया जाता है।
1: जी हाँ, यह है आवाज़ FM, मैं हूँ सीमा सरगम। हमारा प्रोग्राम आवाज़ करियोके क्लब, जिसे आप सुनते हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से। तो अभी जो गीत आपने सुना बिना मुजारिया की आवाज़ में था, ऑल द वे फ्रॉम हैरो लंदन। तो अब हम दावत देते हैं चंद्रा लेखा और उनके साथ हैं दनिश वेग, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, और उनका गीत है मैंने तुमको चाहा पहली बार। इंजॉय कीजिएगा।

0: This is your host from Norfolk, Alex Aller, on a WAZ Drive Time. Listen to me at 4 to 6 on Fridays, 99.8 FM. Turn it up and lock it in. Happy Friday, on a WAZ, 99.8 FM. Call me on our landline, 02381 9800 72. Finish your Friday with me, Alex.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM और मैं हूँ सीमा सरगम, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त। और ये प्रोग्राम है आवाज़ करियोकी क्लब। आप हमें सुनते हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से दुनिया भर में। आप इंटरनेट पे अपने स्मार्टफोन पे सुनते हैं। बने रहिए हमारे साथ, भेजते रहिए अपने प्यारे प्यारे से गीत। और यूकेस व्हाट्सअप नंबर 07784691440। तो जो गीत अभी आपने सुना, चंद्रलेखा, और उनके साथ थे दनिश्वे ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। तो आप सुनते हैं चंद्रु सदारंगनी को, जो कि बेलीज सेंट्रल अमेरिका के रहने वाले हैं, और उनका गीत है जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। इंजॉय कीजिएगा।

0: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुँचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
1: जी हाँ, ये है आवाज़ एफएम। आप हमें सुनते हैं 99.8 एफएम साउथ हैम्पटन से, और अगर आप हैं साउथ हैम्पशायर, विनचेस्टर या पोर्टसमाउथ के इर्द गिर्द के इलाकों में तो आप डीएबी पे भी सुन सकते हैं। लिसन बैक की फैसिलिटीज आपको दी जाती है, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अभी जो गीत आपने सुना कीर्ति कुमारी मदन परदेसी की आवाज़ में हैदराबाद से था, और अब हम दावा देते हैं नचादर सिंह को जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। उनका गीत है तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। तो ये प्यारा सा गीत इंजॉय कीजिएगा।

0: How do you say it? A was or a was?
1: जी हाँ, ये है आवाज FM ऑफ कोर्स, और आप हमें सुनते हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से. हमारा प्रोग्राम है आवाज करियोके क्लब, जो कि आप हर संडे सुनते हैं 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे, और यही प्रोग्राम दोहराया जाता है बुधवार को. और इसका टाइम होता है सुबह 8 बजे UK टाइम के मुताबिक. तो अभी जो गीत आपने सुना नचंद्र सिंह की आवाज़ में था, ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़. तो अब हम रॉही बेंस को इनवाइट करते हैं, जो कि पोर्समथ से हैं, और बेशक वो हमारी बहुत मदद करते हैं आवाज़ कैरियोकी क्लब की अरेंजमेंट और आपके साथ जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो रॉही बेंस के साथ होता है. तो उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं. तो अब उनका गीत है ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें. इंजॉय कीजिएगा.

0: I'm John Denham. You're listening to Hours FM.
1: Southampton's community radio, Hours FM.
2: जी हाँ, ये है आवाज़ एफएम। आप हमें सुन रहे हैं 99.8 एफएम साउथहैम्पटन से। दुनिया भर में इंटरनेट पर, अपने स्मार्टफोन पे आप हमें सुनते हैं, लिसन बैक करते हैं या रिपीट प्रोग्राम सुनते हैं ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग 8 AM। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, भेजते रहिए अपने गीत ऑन 07784691440। जी हाँ, ये है यूके का व्हाट्सएप का नंबर। तो अभी जो गीत आपने सुना, ये थे रॉही बिन्स ऑफ कोर्स, ऑल द वे फ्रॉम पोर्समथ। तो अब हम सुनने जा रहे हैं शिखा कुलर को। बहुत दिनों के बाद उन्होंने अपना गीत हम तक पहुंचाया है, ऑल द वे फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड। तो उनका गीत है प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त लगता है। जी हाँ, और आपने भी बहुत वक्त लगाया अपना गीत हम तक पहुँचाने तक। तो इन्जॉय कीजिएगा।

0: and John Denham. You're listening to Hours FM,
1: Southampton's community radio. Hours FM.
2: बेशक ये है आवाज FM और हमारा प्रोग्राम है आवाज कैरियोकी क्लब. बेशक ये प्रोग्राम है आप ही के गाए हुए गीतों का. दुनिया भर तक हम आपके आवाज पहुंचाते हैं आवाज FM के माध्यम से. बने रहिए हमारे साथ. और जो गीत अभी आपने सुना शिखा को लगे आवाज में था, ऑल द वे फ्रॉम नॉर्दर्न आइलैंड. तो चलिए अब हम दावत देते हैं सुब्रतो मित्रा जी को, जो कि कलकत्ता से हमें अपने गीत पहुंचाते हैं. और क्या खूबसूरत आवाज़ है उनकी. तो ये गीत है अलविदा. इंजॉय कीजिएगा.

0: Hello, friends. My name is Rahi Baines, and I've come to remind you to listen to my radio show, Kinare Kinare, every Tuesday between 11 a.m. and 1 p.m. As usual, there is loads of music, masti and manoranjan for you. The program includes chutkle, funny poems and skits, Bollywood biographies, birthday bash, whereby I mention the names of all my Facebook friends who had their birthdays in the last 7 days, Zara Hatke, which is off the beaten track pieces of musical items, and a lot more. So see you next Tuesday between 11 a.m. and 1 p.m. here on Awaaz FM.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM, मैं हूँ सीमा सरगम। और अभी जो प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, ये थे सुब्रतो मित्रा ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता। तो बहुत अच्छा लगता है जब इतने प्यारे प्यारे से गीत हम तक पहुँचते हैं। तो अब मेरा भी जी चाहता है कि एक मैं गीत आपकी नज़र करूँ। मैं हूँ सीमा सरगम ऑल द वे फ्रॉम स्लाव, और मेरा गीत है चांदनी रातें।

0: To listen back to shows on Awaaz FM, simply go to our podcast page on the website at www.awaazfm.co.uk/podcast. You can download any show and listen to it again. These will stay on the website for 14 days. Alternatively, listeners can call the studio on 02381 980072 and press option 4, and you can record your dedication or request. We will then download your voice message, edit it, and then add the requested song and play out during our overnight service.
1: बेशक ये है आवाज़ FM, मैं हुसैमा सरगम आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त, और आप ही के लिए ये प्रोग्राम लाती हूँ आवाज़ कैरियोकी की क्लब, आपके गाए हुए गीतों का प्रोग्राम हर संडे 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे, और इसका रिपीट होता है वेनसडे मॉर्निंग 8 AM यूके टाइम पे। दुनिया भर में आप इंटरनेट पे अपने स्मार्टफोन पे सुनते हैं प्रोग्राम, और अगर मिस कर दिया है तो लिसन बैक ज़रूर कीजिएगा। अभी जो गीत आपने सुना ये मेरी आवाज़ में था, मैं हूँ सीमा सरगम फ्रॉम स्लाव लंदन। तो अब एक गीत आपकी नज़र करती हूँ अखिल सक्सेना की आवाज़ से, जो कि ऑल द वे फ्रॉम मुंबई से हैं, और उनका गीत है जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना है। इंजॉय कीजिएगा।

0: is Natalie DeLuccio, and keep listening to Awaaz FM.
1: बेशक ये है आवाज़ FM, मैं हूँ सीमा सरगम और हमारा प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं आवाज़ करियोकी क्लब 99.8 FM साउथहैम्प्टन से प्रस्तुत होता है और इसके अलावा दुनिया भर में आप इंटरनेट पे सुनते हैं, अपने स्मार्टफोन पे सुनते हैं, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। जो गीत अभी आपने सुना अखिल सक्सेना की आवाज़ में था, ऑल द वे फ्रॉम लोखंडवाला मुंबई। तो अब हम सुनते हैं कमलेश पैरी को, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं और उनका गीत है वो हैं ज़रा खफा खफा। इंजॉय कीजिएगा।

0: Manicky.
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.
0: बेशक ये है आवाज FM और हमारा प्रोग्राम है आवाज कैरियोकी क्लब. आपके गाए हुए गीत होते हैं इसमें और इसलिए तो ये प्रोग्राम इतना जबरदस्त है. दुनिया भर में सुना जाता है, दुनिया भर से आपके गीत हम तक आते हैं ऑन 07784691440 पे. तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए. जो गीत अभी आपने सुना शोभा शास्त्री की आवाज़ में था, ऑल द वे फ्रॉम सूरत गुजरात. तो अब हम दावत देते हैं अशोक तकवानी जी को, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं, और गीत है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. इंजॉय कीजिए.

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
1: बिल्कुल, ये है आवाज एफ एम. मैं हूँ सीमा सरगम. आप हमें सुनते हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से. दुनिया भर में आप इंटरनेट पर अपने स्मार्टफोन पर सुनते हैं और आपको जो रिपीट प्रोग्राम दिया जाता है वेनसडे मॉर्निंग यूके टाइम के मुताबिक होता है 8 o'clock, लेकिन आप अपने मुल्कों में सुन सकते हैं अपने मुल्कों के टाइम के मुताबिक. बने रहिए हमारे साथ. और जैसे कि अभी आपने सुना है बहुत ही खूबसूरत सा गीत राजेश काकवानी जी की आवाज़ में, ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद. तो अब जितेंद्र कंपोज, उनको हम इन्वाइट करते हैं मिसिस सागा ओंटारियो से. गीत है तेरी आंखों का जो इशारा ना होता. प्यारा सा गीत है, इंजॉय कीजिएगा.

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: तेरी आंखों का जो इशारा ना होता, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा था जितेंद्र कंबोज की आवाज़ में, और ये गीत आया था हमें मिसिस सागा ओंटारियो से। आप भी अपने गीत हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए मैं यूके का व्हाट्सएप का नंबर आपको देती हूं, ये है 07784691440। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब हम दावत देते हैं मदन परदेसी को, जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं। उनका गीत है दिल का भंवर करे पुकार, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है। इंजॉय।

0: John Denham. You're listening to Hours FM. Southampton's Community Radio,
1: Hours FM. जी हाँ, ये है आवाज़ एफएम और आप हमें सुनते हैं 99.8 एफएम साउथहैम्पटन से। अगर आप हैम्पशायर या पोर्समथ के इलाकों में हैं तो आप हमें डीएबी पे भी सुन सकते हैं। दुनिया भर में आप इंटरनेट पे सुनते हैं, अपने स्मार्टफोन पे सुनते हैं। इसी तरह बने रहिए। और जो गीत अभी आपने सुना, ये थे मदन परदेसी ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद, दिल का भंवर करे पुकार। तो अब हम दावत देते हैं दिनेश वेग को, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। उनका गीत है आ चल के तुझे मैं ले के चलूँ। ये बहुत ही प्यारा सा नगमा है, सब मिलके एंजॉय करते हैं।

0: From Wolston to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Hours FM.
1: बेशक ये है आवाज़ FM और आप हमें सुन रहे हैं 99.8 FM साउथैम्पटन से. मैं हूँ सीमा सरगम और हमारा प्रोग्राम है आवाज़ कैरियर की क्लब. बिल्कुल आपके गाए हुए गीतों का ये प्रोग्राम होता है और आपके गीत पहुँचते हैं दुनिया भर तक आवाज़ FM के माध्यम से. तो इसी तरह भेजिए अपने गीत ऑन 07784691440. और अभी जो आपने गीत सुना दिनेश विक्की आवाज़ में था ऑल द वे फ्रॉम मुंबई. और मैं घड़ी की तरफ देख रही हूँ, वही टाइम हो रहा है. जी हाँ, हमारे जाने का टाइम. तो इजाज़त तो आपसे लेनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले एक गीत आपके लिए मैं छोड़े जा रही हूँ. ये है वेंकटा रमना गेडी की आवाज़ में ऑल द वे फ्रॉम काकीनाडा आंध्र प्रदेश. और गीत है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद. लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे आज के बाद आप दोबारा अपना गीत हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम इसी तरह दुनिया भर तक आपकी आवाज़ पहुँचाते रहें. मेरी तरफ से गुड बाय एंड रब रखा. आप इंजॉय कीजिए इस गीत को.

जी फिल्म बाला गड्डी में जनाब सन पट्टी और गाने से भेजी आने से जी तेरा हुसन नहीं सजना यार बिना या फिर होना नहीं गुजारा प्यार बिना। हुन तुसां कि अगला सुनाने जी एक सैफ मलूक ना कलाम। सैफ मलूक ने कलाम तो बहुत सारे जी बहुत सारे साथियों संगियों ने गाया। अज जिहड़े गुलाकार तुसाने खिदमत में आना पिया इन्हां दा नां है जी मसरत नाज। ते इन्हां दी आवाज सुनने पे जी आने जी मिठा मेवा बेरी देवे और फिर भी वट्टे खावे।

0: ले
1: मैं क्या सोचती,
0: चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हाल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल, जरा लचक लचक के जरा मटक मटक के लट झटक झटक के।

जी तुसा हुण सुनी जी आवाजा दो त्रै जैसी जसबीर जैसी ते सोनिया शर्मा आकाश सिंह होरां दी आवाज जी फिल्म सी स्वीटी वेड्स एन आर आई ते कुड़ी गुजरात दी इस ना टाइटल सा। हुण तुसा कि जेहड़ा अगला गाना मैं सुनाण लगा फिल्म दा नां आ लावारिस ते मलका इतरनम नूर जहां होरां दी आवाज ही ते आखणे जी जदों तक तेरा मेरा साह नहीं मुकदा अल्लाह दी सो दुनिया तो प्यार नहीं मुकदा।

जी गड्डी माड़े राजे नी पिंडी रूट पे चलनी है जी सुनिया तुसा ए आसिफ मीर होरां नी आवाज विच ते हुण तुसा के अगला गाना सुनाना फिल्मी गाना जी फिल्म नाम लच्छी नसीम बेगम ते मसूद राणा होरां नी आवाज जी आखणे जी डरदे हामी भर ली प्यार तेरे दी हामी भर ली।

0: Right then. All right, we're just coming to the end of the show. Just before we go, a few shouts in terms of the Harbour Lights Cinema in Southampton. We've got NASA Q&A live and broadcast tomorrow night. That's the film that's been partly made by The Guardian about the situation in Gaza, which is meant to be very interesting. We've got The Social Reckoning that's on. Pan's Labyrinth, which is a great film. 20th anniversary coming up 31st of October. We've got Doctor Who, and that's not until November. What we've got coming up on Sunday, Zone of Interest. I watched all the other three. John Glazer, what's his name? Theme of Glazer. He's the director. He did Sexy Beast, Birth, and Under the Skin. All three of them I've watched at Harbour Light. It's been brilliant. And then Zone of Interest, one filmed in Auschwitz, which is an amazing film. That's on this Sunday, 8 p.m. as well. New film called Fatherland that's out on Friday. Looks interesting. And Ghost of the Possession of Buttonhouse and Wildwood. All coming up at the Great Harbour Lights Independent Cinema in Southampton. Right, we're just about coming up to the time for news. So I want to say goodbye. And I'll see you next week. Please stay safe. Peace, love. And peace.
1: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM. 24 hours a day, Hours FM, online and on air. On 99.8 FM and online around the world, this is Southampton's Hours FM News.
2: Andy Burnham has told Ukrainian President Volodymyr Zelensky Britain's support for Ukraine will not change. It comes as Zelensky was welcomed to Downing Street this afternoon. Burnham says Britain will offer what support they can.
3: I called him on Saturday because I recognised it was another very dark.
4: On 99.8 FM and online around the world, and on digital DAB radio across Southampshire, this is Southampton's Awaz FM News.
5: Urdu News ke saath main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. Ameriki sadar ne kaha hai ki Pakistan aur Turkiya ka Saudi Arab ki madad karna achhi baat hai. Donald Trump ne kaha hai ki Rus Amerika aur aalmi mandi ko 3 lakh ton diesel farham karega. अमरीकी प्रेसिडेंट ने इस साल भी नोबल अमन इनाम न मिलने पर शदीद नाराजगी का इजहार कर दिया। बरतानिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर सर केर स्टार्मर के इस्तीफे के सबब खाली होने वाली पार्लियामेंट की नशिस्त पर इलेक्शन में बाहिजाब खातून कामयाब हो गईं। आईएमएफ के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए अहम इजलास, पाकिस्तान को अकसात की अदायगी के लिए अहल करार दे दिया गया। और भारतीय फोर्सेस की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब इन खबरों की तफसील।
6: यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान और तुर्किया का सऊदी अरब की मदद करना अच्छी बात है। ईरान के साथ तनाजा जल्द खत्म हो जाएगा। ईरान मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। दूसरे ईरानी हुक्काम का कहना है कि अमेरिका से जोहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, यूरेनियम अफजूदगी से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। जोहरी प्रोग्राम पर बात से पहले अमेरिका को ईरानी शराइत कबूल करना होगी। बरतानिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर सर केर स्टार्मर के इस्तीफे के सबब खाली होने वाली पार्लियामेंट की नशिस्त पर इलेक्शन में बाहिजाब खातून कामयाब हो गई। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक इलेक्शन में लेबर पार्टी की सागल अब्दी वली 12,292 वोट लेकर कामयाब हुई। 42 ईयर्स ओल्ड अब्दी वली सोमालिया की नयात हैं। इलेक्शन में कामयाबी पर उन्होंने कहा कि हल्के की नुमाइंदगी करना एजाज है, हल्के की आवाम उम्मीद की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए अहम स्टाफ मीटिंग में मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को $1 अरब और बाद अजा $21 करोड़ मिलेंगे। हतमी मंजूरी आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। میٹنگ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے سینٹرل ایسٹ تنازع کے باوجود معاشی استحکام برقرار رکھا، ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے، ٹیکس وصولی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ بھارت کے زیر انتظام مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی جانب سے بارہ مولہ، کپواڑہ اور راجوری کے مقام پر سرچ آپریشن کے دوران درجنوں کشمیری نوجوان گرفتار کر لیے گئے۔ جموں جیل میں کشمیری نوجوان کی شہادت کے بعد احتجاجی مظاہروں کے دوران کئی مظاہرین زخمی بھی ہوئے۔ حریت رہنماؤں نے بھارتی مظالم پر شدید احتجاج کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سال بھی نوبل امن انعام نہ ملنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فیصلے کو شرمناک قرار دے دیا۔ گزشتہ روز سویڈن کی رائل سویڈش اکیڈمی نے امن کے نوبل انعام 2026 کا اعلان کیا۔ اس سال کا نوبل امن انعام ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھنے والی ہیومن رائٹس کی ایک ایڈوکیٹ اس سال کا نوبل امن انعام ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھنے والی ہیومن رائٹس کی

वेलकम बैक टू सोना दिल अपना पंजाबी सोनी एंड आवाज एफएम 99.8 है सारा स्टूडियो नंबर आएगा 83 81 98 00 70 दैट्स 83 81 98 00 70 नाले सारा व्हाट्सएप नंबर आएगा 0784 691 440 दैट्स 0784 691 440 आज मैं तारे वासे बेस्ट म्यूजिक प्ले करूंगा जरा मैं पंजाबी हिंदी हाफली तीस दोनों सारे इंजॉय करूंगा सिट बैक रिलैक्स नाल इंजॉय पहला गाना मैं तारे वास्ते हम प्ले कर लूँगा छइयां छइयां एंड ये गाना हैगा दिल से मूवी तो अमेजिंग गाना हैगा हॉपफुली वन ऑफ माय फेवरेट्स हॉपफुली दिस भी इंजॉय करूँगा यार को साडा स्टूडियो नंबर हैगा 83 81 98 00 70 दैट्स 83 81 98 00 70 नाले साडा व्हाट्सएप नंबर हैगा 0784 691 440 दैट्स 0784 691 440 हम इंजॉय करो दिस छइयां छइयां From the movie Dil Se. I hope you guys enjoy. Here we go.

Welcome back to Shinna Dil Apna Punjabi Sony and Awaaz FM 99.8. Sara studio number hai ga 8381980070. That's 8381980070. Sara WhatsApp number hai ga 0784691440. That's 0784691440. Aaj obviously main badhiya je gaane tade vaste play karunga. Best music mere list hai ye kafi badhiya ji. Hopefully you enjoy karunge. अगला मैं गाना तेरे वास्ते हम प्ले करूंगा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स अपना पंजाब है पर वन एंड ओनली गुड आसमान. हाँ जी मेरा रूल है कि मैं हमेशा गुड आसमान का गाना प्ले करना क्योंकि काफ़ी अमेजिंग सिंगर है नाले ये वन ऑफ माय फेवरेट गाना है. सो होपफुली सिट बैक रिलैक्स नाले ये गाना इंजॉय करो अपना पंजाब है पर वन एंड ओनली गुड आसमान.

वेलकम ब्याक क्रिस्टियन दिल अपना पन्जाब बिसाउन यू नो वाज एफएम 99.8 ए तर स्टुडियो नम्बर है 83 81 98 0070 83 81 98 0070 नाले सर ओबस नम्बर है 0784 69 1 44 0784 69 1 44 0 लाइक भी करे हो नाले शेयर भी करो तारे फ्रेंड्स एंड फैमिली नो को लाइक करो सारे अंदर सो ऑब्वियसली आज मैं आप भी गाने प्ले गए सारे सैड है गए इस कारण कि आप भी गाने में कैन प्ले कर ऑब्वियसली तुम इंजॉय करोगे अगला गाना हम प्ले करेंगे तब वैसे हॉस्टल ने बा हैगा गाना सरीमान हब भी गाइस इंजॉय यार रखो गाइस सर स्टूडियो नंबर है 83 81 98 0070 दैट्स 83 81 98 0070 नाउ लेट्स अनदर व्हाट्सएप नंबर है 0784 691 440 दैट्स 0784 691 440 होपफुली गाइस इंजॉय करते हम सरीमान हॉस्टल हियर वी गाइस

0: की आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर, आवाज एफएम.
1: From St Denis to St Mary's, from Portswood to Pear Tree, this is Hours
2: FM. एक पल की लापरवाही.
3: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

खोकर आया हूँ इंसानों की गलियों से, इंसानियत ना मिली इंसान ना मिला। इबादत के नाम के झंडे तो मिले, इबादत ना मिली भगवान ना मिला।

0: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Ours FM.
1: How do you say it? A was or a was?
2: Welcome back to the Lop Lop Job is owning on Ours FM 99.8. This at a studio number 0238198070. That's 0238198070. Now let's add a WhatsApp number 0784691440. That's 0784691440. अगला गाना हम तारे वैसे प्ले करने का अमेजिंग गाना है का रोटी एंड इज द वन एंड ओनली गुड आसमान मैं का गुड आसमान का गाना हमेशा मैं प्ले करता हूँ वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स है गया सो आई प्लीज एंजॉय करेंगे रोटी हियर वी गो

0: आई एम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए। आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.

0: माँ हर समय हर जगह नहीं हो सकती, ऐसे में उसका एहसास देती हैं। हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Awaz FM is supporting local radio

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
4: Hello, this is Ruxana Simrow. I'd like to dedicate this to Hours Radio Southampton and the whole team. Naam gum jayega, chehra badal jayega, meri awaaz se pehchan. Thank you, Ali.
3: Southampton's Community Radio, Hours FM.

0: This is Natalie DeLuccio and Sunte Rahi Hai Awaaz FM.
1: एक पल की लापरवाही.
2: अंकल मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: जी, ये अब्बास हसन बोल रहे हैं, आप आवाज FM सुनते रहिए।
1: At Southamptonshire College Group, we're creating better futures. Build real world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southamptonshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए, आप अपने आवाज FM पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज FM के साथ।
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: I'm going to send you the message again and you can't see, if you can't do my birthday, you...

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर व नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में दो शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्म में तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।

वाइन तू करे ब्लो बाकी करे शाइन तू करे ग्लो जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ बेबी लेट्स गो Right now, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ लक तेरा लीन बात तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव

0: the jukebox.
1: Drive time on a WAZ with Aaron. Chat, tunes and travel updates that may or may not be accurate. Join me Mondays 4 to 6 only on a WAZ FM 99.8 FM.
2: एक पल की लापरवाही।
3: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: मैडम सॉरी बच्चों मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
4: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
5: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
6: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
7: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
8: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
9: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
10: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.

0: zum Parken in der Kusthäge.
1: माँ हर समय हर जगह नहीं हो सकती, ऐसे में उसका एहसास देती है। हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम।
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
4: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
5: Get in touch with Awaz FM on WhatsApp 07784 691 440.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव responsibly. फोकस ऑन द रोड।

हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही, बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया, अपने स्पेशल से बेटे को कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू माँ।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: जी, ये अब्बास हसन बोल रहे हैं। आप आवाज FM सुनते रहिए।

0: अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हुई हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा, मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में, ओस कतरों में, खुशबुओं में ना पाओ मुझे, अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफितों में तुम्हें मिलूंगा।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुँचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Southampton's community radio, Awaz FM.
5: How do you say it? Awaz? Or Awaz?
6: Say again.
7: Yeah, I'm listening to Awaz all the time when I'm driving, because I'm delivering, and I'm delivering your own food today. That was nice.
4: 24 hours a day, Awaz FM, online and on air.
8: Hello, my name is Hira Singh, and I have my son birthday today, and I sent for my son his song for Nusrat Fateh Ali Khan. ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਨਸਰ ਤੇ ਲਿਖਾ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
4: ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ, ਆਵਰਸ ਐਫ ਐਮ।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Was FM live across Southampton on 99.8 FM and on DAB channel 7D in South Hampshire and via the website hoursfm.co.uk.